उस सेवक नूं कोई भी दुख पौंदा नहीं जिस सेवक दे सिर ते सतगुरु दा हाथ हुंदा है। सतगुरु जी बाणी च फरमान करदे ने, सब सहे उपर नजर प्रभ तेरी, किसे थोरी किसे है कनीरी। निगाह सतगुरु दी सब दे उपर है, कृपा बरस रही है, पर किसी ते थोड़ी है, पर किसी ते बहुत है। जिदे ते बहुत है, जिदे ते सतगुरु की प्रसन्नता है, सतगुरु जी तुट के उसनों सतसंगत की दात देंदे ने, नाम की दात देंदे ने, अपना बना लेंदे ने। उस सेवक दे सतगुरु जी सारे कार्य रास करदे ने। यही नहीं, ये लोग सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। उस अपने सेवक दे इलोक ते परलोक दोनों ही सहेले कर देंदे ने, किदे जिदे ते सतगुर दी नजर करेरी है। जो सेवक सतगुर नूं समर्पित हो जाता है, जो सतगुरु दे वचना ते सेवक चलता है, गुरु उस दे उपर कृपा करता है। गुरु प्यारियो, मैं एक गल जरूर कह रहा, हर एक इंसान की कोई ना कोई पटकना है। कोई किते पटक रहा है, कोई किते पटक रहा है, कोई किसे नू रब मानी बैठा है, कोई किसे नू रब मानी बैठा है। जिन्ना चर इंसान ये ओट आसरे बारले तकदा है, उन्ना चर ये इंसान ये जीव धक्के खांदा है। किदां धक्के खांदा है? फिर एक जोन विच नहीं जांदा, अनंत जोना भोगता है। पातशाह जी बाणी विच सानू फरमान करदे ने कि देखो, ई मानस जन्म दुलंभ है, होए ना बारे बार। ई मानस जन्म दिता है, समझ दिती है, ज्ञान इंद्रियां दितियां ने, नेत्र दिते ने, कान दिते ने। पर गुरु प्यारियो, मैं आप जी ने एक गल होर भी नाल दस दिया, तुसी कदी विचार करना, कले बैठ के देवते ने हाले मुक्त नहीं होए। उन्हां दे कोल एक विकसित मन है, बहुत विकसित मन है, सातों भी कितने ज्यादा दीवा बलिया होया है। पर लेकिन मुक्त होने वास्ते इस देही को सिमरै देव, सो देही भज हर की सेव। वो देवते भी इस देही नूं सिमरते ने, उसनों कहिंदे ने, हे अकाल पुरख साडे ते कृपा कर, सानू भी मानस जन्म बख्श, ताकि असी रहिंदा पेंडा जिहड़ा है वो भगती करके तेरी असी तय कर सकीए, तेरे विच लीन हो सकीए। हुण देवतियां कोल विकसित मन है, पर मुक्त होने वास्ते तन नहीं है। उन्हां नूं भी एक बार फिर माता दे गर्भ तो जन्म लेना पैंदा है। एक पशु है, उस पशु दे कोल विकसित तन है, बड़ा विशाल तन है हाथी दे कोल, बड़ा ताकतवर शरीर है शेर दे कोल, पर विकसित मन नहीं है उसके कोल। ये मन तन सतगुरु जी ने एक सिर्फ इंसान नूं बख्शा है। जिथे इसनों मन की दात दिती है, तन की दात दिती है, इतने इसनों सारी समझ भी दिती है। ता ही सतगुरु जी कहते हैं कि ऐ जीव, नहीं तो तू इस पौड़ी ते जो नर छुटके से आए जाए दुख पाएगा। जो ये पौड़ी तेरे हथों छुट गई ना, तो फिर तेरा आन जाण का गेट बन जाएगा। फिर की होगा? केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। कई जूना तू दरख्तां दियां, जानवरां दियां, उड़न वाले पंछियां दियां, पशुआं दियां, सप्पां दियां भोग के आया है। कई जूना तू पत्थरां दियां भी भोग के आया है। केते रुख विरख हम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली मह आए, केते पंख उड़ाए। इस करके इनिया जोना भोगण तो बाद 84 लाख जोना भोगण तो बाद तेन ए पई प्राप्त, मानुख दिहोरिया गोविंद मिलन की एहो तेरे परिया। जिहड़ी तू आवागौन की भटकना शरीर विच रह के कर रहा ने, कदी किसी के दर ते, कदी किसी के दर ते, तू उस परमेश्वर का हो जाए। जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो, जो तू परमेश्वर का बन जाएगा सारा संसार तेरा बन जाएगा।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਣ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਸ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਗੇੜ ਨਾ ਬਣੇ, ਫਿਰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨਾਂ ਨਾ ਭੋਗਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਬ ਕੀ ਵਾਰ ਬਖਸ਼ ਬੰਦੇ ਕੋ ਬਹੁ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ। ਸੋ ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਾ ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम न हुई, तू करता करना मैं नाही जा हौ करी न हुई। भलेहारी कुदरत

पवन तुदना पवन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म द्वारे गावन तुदना चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बीच।

गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतन उपाए तेरे अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर

न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी पाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता आपना जो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहपत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा या

जिन दिन कर कै कीती रात खसम विसारह ते कम जात नानक नावै बाज सनात राग गुजरी महला चौथा हर के जानू सतगुरु।

मेरा प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रहरास रहाउ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै त्रिपता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। तन तन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उत्तम, जा आहर हर जीव परया। सैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया रहाउ। जनन पिता लोक सुत बनता, कोई न किस की तरिया। सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर, काहे मन भओ करिया। ऊडे ऊडावे सह कोसा, तिस पाछे बचरे छरिया। तिन कवन खलावे कवन चुगावे, मन में सिमरन करिया। सब निदान दस अष्ट सिदान, ठाकुर कर तल तरिया। जन नानक बल बल।

सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगम अपारा, सब त्यावह सब त्यावह तुद जी, हर सच्चे सिरजनहारा। सब जी तुम्हारे जी, तू जिया का दातारा, हर त्यावहु संतो जी, सब दुख विसारण हारा।

तू घट घट यंत्र सर्व निरंतर जी, हर एक को पुरख समाना, एक दाते एक पेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना, तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना।

जो सेवह तुद जी, जन नानक तिन कुर्बाना, हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी, से मुकत भये जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फासी।

सोई थीसी जो तू देहे सोई हौ पाई रहाओ सब तेरी तू सब नी त्याया जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया गुरमुख लाधा मनमुख गवाया तुद आप विछोड़या आप मिलाया

खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिस नौ तू जाना हे सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाने। जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद बिन दूजा अवर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला।

तह डूबियले, मन एक न चेतस मूढ़ मना, हर विसरत तेरे गुण गलया रहाओ। ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया, प्रणवत नानक तिन की सरणा, जिन तू नाही विसरया। आसा महला पंजवा, पई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोबिंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरे किते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ।

एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई, हमरी करो हाथ दै रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तव चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु, आप हाथ दै मुहे बचावहु। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज कर दै करिए, सब बैरन को आज संगरिए। पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें चाट कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझु करे हो रक्षा। राख लेहो मुहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिव जू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो। आदंतिक कै अवतारा, सोई गुरु समझे हो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सुवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो, शत्रन को पल मुँह बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर अस थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला।

सहाय, दुष्ट दोख ते लेहो बचाय। खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ दे लेहो उबारी। सर्ब ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सुवैया

कृपा तुमरी कर। मैं न कहो सब तो हे बखाने दोहरा, सगल द्वार कहो छाड़ कै कहो तुहारो द्वार, बाहीं गहे की लाज यस

जी नह जाई नित नित रखुर तारू तम संसार चरण लगतरी है सब नानक ब्रह्म पसारू श्लोक महल्ला पंजवा।

0: हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर लख अपार किसी ही नाल ना चलिया खप खप मोए असार सोइना रूपा संचिय माल जाल जंजाल सब जग में दोही फेरिये बिन नावे सिर काल पुत्ता देख वगसिये नारी सेज पतार चोवा चंदन लाइये छोड़ चले कर बाहर महर मलूक कहाइये राजा राव के खान चौधरी राव सदाइये जल बणिये अभिमान मनमुख नाम वसारिया ज्यो डव ददा कान हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग का जल पोठड़ी अंध परे ते समाहे। महाराज कहिंदे जो आया है ना वो ममता दे विच जा रहा है दर घर मेरे घर दे दरवाजे बड़े सोहने ने मेरा महल बड़ा सोहना है दर घर महिला सोहने पक्के कोट हजार हस्ती घोड़े हाथी है घोड़े ने मेरे को आ कुछ महल माड़िया ने आ पदार्थ ने हस्ती घोड़े पाखरे लश्कर फौजा ने लश्कर लाख पार पर महाराज कहिंदे मूर्खा हो मैं कादी करदा है किस ही नाल ना हां जी किस ही नाल ना है ते तेरे कोल जरूर ने पर एक गल तां तू दावा कर सकदा भी मेरे नाल जाणगे किस ही नाल ना चलिया खप खप खप खप के मर जांदे ने खप खप मोए असार। फिर महाराज कहिंदे सोइना रूपा चांदी संचिया माल जाल जंजाल सब जग में दो ही फेरी है सारे जग विच तेरी दो ही चलदी होवे तेरी बल्ले बल्ले हुंदी होवे सब जग में दो ही फेरी है बिन नावे सरकार पुत्ता पुत्रां नूं वेख के बड़ा खुश हुंदा है उन्हां साथ नहीं देना पुत्ता देख बगसिया नारी घरवाली घरवाले नूं वेख के खुश हुंदे है पुत्ता देख बगसिया नारी सेज पतार चोवा चंदन लाई है छोड़ चले कर बार। साहब जी कहिंदे महर मलूक कहाई है सब कुछ ये कहा लिया है बिन नावे सरकाल आवेगा। पातशाह जी कहिंदे जो आया संसार विच हो मैं कर कर जाए सी जो आया जग माहे सब जग का जल कोठड़ी तन मन देह सो आहे कजल दी कोठड़ी है इहदे विच जो आउंदा है होमे दे विच लग जांदा है। तुहानूं एक दिन वार सुनाई सी मैनूं याद है मेरे ख्याल डेढ़ वीक हो गई है होमे तो कौन बचदा है जिस वेले निगाह मारदे देवी देवते तमाम भाई गुरदास साहब जी दी पहली वार दी पौड़ी है जी जति सती चिर जीवने साधक सिद्ध नाथ बहु चेले देवी देवर खीसरा भैरो खेत्र बाल बहु मेले गन गंधर्व अपच्छरा किन्नर जख चलत बहु खेले राक्षस दानो दैत लख अंदर दूजा पाओ दुहेले होमे अंदर सब को डुबे गुरु सने बहुचे ले गुरमुख कोई ना दसई ढूंढे तीर्थ जात्री मेले ढूंढे हिंदू तुरक दोए पीर पकंबर कौम कतेले अंधी अंधे खूहे ठेले ब्रह्मा विष्णु महादेव त्रैगुण रोगी विच होमे कार कमाई जिन किए तिसे न चेते बपड़े हर वाहिगुरु जी हर गुरमुख सोजी पाई गुरमुखा नु ज्ञान आ गया है। वो ममता छड़ देंदे ने जदों ममता चले गई फिर हंकार खादा है फिर ता हंकार चला गया वो शब्द तो ज्ञान लेंदे ने हंकार ते बड़िया बड़िया ने कीता है पर खत्म हो गए ने। एक तुहानू बोल याद है तुसी जिन्ने बैठे हो स्रोते हो आखो सतनाम श्री
1: वाहेगुरु
0: गरीब निवास जी दे अमृत बचन ने ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया है देवता है पर जदों कहिंदा मैं ही रब हां बस घूमदा रहा फिर तां लब्भा ही नहीं परमात्मा है किथे है ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की बेपत पड़ी पुछतानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है बड़ा बुरा जिस गुर मिले तिस पार उतारे जिन्हों गुरु मिल जाता है महाराज उन्हू हंकार तो निवृत कर देंदा है ओदे लागे हंकार नहीं आउंदे आपा नहीं जनाउंदा ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की बिपत पड़ी पुछतानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ निवार बल राजा माया हंकारी जगन करे बहु भार अफारी हरी चांद दान करे जस लेवै बिन गुर अंत न पाए अपेवै आप भुला।

0: मार्ग अर्थ है रास्ता, जे मार्ग के गणे जाहे ना कोसा, हर का नाम ऊहा संग तोसा। तोसे तो भाव खुराक है। पातशाह जी कहिंदे मार्ग बिखड़ा है जिदे विच जाना है। पातशाह जी कहिंदे आपां किधरे गड़ी कोई चंगी मार्ग रस्ते ते ना पाईए तो बंदा औखा हुंदा। कहिंदे रस्ता चंगा नहीं है, इस करके महाराज कहिंदे जिहड़ा रस्ता है बड़ा बिखम है, डरावना है, जिन्हां रस्ते तू जाना है। तो साहब जी कहिंदे क्यों तरिया, किवें तरिया जाएगा, भाव उत्थे तारन वाला केवल एक गुरु का ही नाम होवेगा। जय महा भयान दूत जम दल है तह केवल नाम संग तेरा चले, उथे नाम सहाई होवेगा।
1: नानक गुर राखे से उबरे।
0: सतनाम श्री
1: वाहेगुरु।
0: साहब जी कहिंदे जिन्हां नूं मेरा गुरु रख लवे, गुरु अगे ही ते तरला लैणा है ना, सीधा मिला महाराज नूं। दरिया सतलुज दे कदी इधर लै जांदा, कदी इधर लै जांदा, कदी बेड़ा बने लाउंदा ही नहीं है। सतगुरु महाराज कल की तरफ मुस्कुराए, कह लगे बेड़ा बन्ने ला दे महाराज, होर दीदार कर ला, होर दर्शन कर ला, अखियां रजदियां नहीं है, बेड़ा बन्ने लग गया उधरे। जदों सतगुरु महाराज खजाने चो माया देन लगे, सीधा मलाह कहिंदा महाराज ये की है? साहब कहिंदे तेरा मजदूरी है, गरीब नवाज बेनती है, जेडे इको ही कारोबार दे मालक होण ना वो पैसे नहीं लिया कर दे, मैं ऐस मलाह तो बेड़ा बन्ने लाया है। महाराज तुसी समर्थ हो, गरीब निवास सचे पातशाह, पर लोक घर जांदिया होया संसार समंदर तो मेरे जीवन दा बेड़ा बन्ने ला दियो। सतगुरु जी प्रसन्न हो गए, घुट के गल वकड़ी विच ला लिया। तेवे अरदास करनी जिन्हां नूं गुरु रख लवे। पातशाह जी कहिंदे उभरे ओही बचदे ने, वरना बचा नहीं हुंदा।
1: हर नाम उधारी,
0: नाम करके तर जांदे ने, वाहिगुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। आओ 5 सेकेंट मिंट दा समा आखो जी।

तेत घर गावो सोहेला सिवरे सृजन हारो तुम गावो मेरे निरभव का सोहेला हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहा नित नित जीड़े संभालिया।

विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस कथ कथा तन जानी जाको आए सोई बिहार जो हर गुरते मने बसेरा निज कर महल पावो सुख सहजे बाहर न होए गो फेरा अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे अंतर जामी पुरख बिदाते सरदा मन की पूरे नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की।

प्रसाद सुगंधत तन लावै तिसको सिमरत परमगत पावै। जिहि प्रसाद बसै सुख मंदर तिसे तिहाई सदा मन अंदर। जिहि प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हौ तिस रसना। जिहि प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा तिहाइयै तिहावन जोग। जिहि प्रसाद पाठ पटंबर हटावा है तिसह त्याग तत अवर लोभावा है। जिहि प्रसाद सुख सेज सोई जय मन आठ पहर ताका जस गावी जय। जिहि प्रसाद तुज सब को मन मुख ताको जस रसन बखाने। जिहि प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगह मान पावे नानक पात से ती घर जावे। जिहि प्रसाद आरोग कंचन देही लिव लावो तिस राम स्नेही। जिहि प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे है हर हर जस कहत। जिहि प्रसाद तेरे सगल छिद्र ढाकी मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताकै। जिहि प्रसाद तुझ को ना पहुचै मन सा सा सिमरहो प्रभ ऊचे। जिहि प्रसाद पाई दुर्लभ देहि नानक ताकी भगत करेहि। जिहि प्रसाद अभूखन पहरी जय मन तिस सिमरत क्यों आलस की जय। जिहि प्रसाद असव हस्त असवारी मन तिस प्रभ काओ कबहू ना बिसारी। जिहि प्रसाद बाग मिलख तना राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई उठत बैठत सद तिसै त्याई। तिसै त्याई जो एक अलख है इहां उहां नानक तेरी रखै। जिहि प्रसाद करहै पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जिहि प्रसाद तू आचार व्यवहारी तिस प्रभ कौ सास सास चितारी। जिहि प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरौ सदा अनूप। जिहि प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जिहि प्रसाद तेरी पत रहै गुर प्रसाद नानक जस कहै। जिहि प्रसाद सुनै करण नाद जिहि प्रसाद पेखै बिस्माद। जिहि प्रसाद बोलै अमृत रसना जिहि प्रसाद सुख सहजे बसना। जिहि प्रसाद हस्त कर चलै जिहि प्रसाद संपूर्ण फलै। जिहि प्रसाद परमगत पावै जिहि प्रसाद सुख सहज समावै। ऐसा प्रभ त्याग अवरकत लागहो गुरु प्रसाद नानक मन जागहो। जिहि प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जिहि प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तू ता कौ जाप। जिहि प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिसह जान मन सदा हजूरे। जिहि प्रसाद तू पावै साच रे मन मेरे तू ता सिउं राच। जिहि प्रसाद सब की गत होए नानक जाप जपै जप सोए। आप जपाए जपै सो नाउ आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल बिगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मत उत्तम होए। सर्ब निधान प्रभ तेरी माया आपौ कछु न किन्हु लया। जित जित लावहु तित लगै हर नाथ नानक इनकै कछु न हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साध जना की अर्च अचर्च कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझ है प्रभ नीरा साध संग सब भूतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी। साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा पर फुलै। साध कै संग आवै बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै साध संग असथित मन पावै। साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत। साध संग किस्यो नहीं बैर साध कै संग न बीगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बड़ाई नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग ना कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बस अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै।
साध कै संग बसै थान उचै साधु कै संग महल पहुचै साध कै संग दृढ़ै सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुरबान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निसकारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग सोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सर्वथान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं काश काल दर्शन भेट तो होत निहाल साध कै संग कलुख तहरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग इहां उहां सोहेला साध संग बिशुरत हर मेला जो इच्छै सोई फल पावै साध कै संग न बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उधरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाउ साध संग हर के गुण गाव साध कै संग न मनते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संगत पई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध पेटे संजोग साध की महिमा बेद ना जानै जेता सुनै तेता बख्यानै साध की उपमा ते हुगुण ते दूर साध की उपमा रही भार पूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊंच ते ऊंची साध की शोभा मूच ते मूची साध की शोभा साध बने आई नानक साध प्रभ भेद न पाई सलोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोय नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंग कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीरज एक ज्यों बसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गुनाहू नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होय प्रगास जैसे घर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी सेजन पए नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरीना आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते काश बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पार उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंधा ब्रह्म ज्ञानी कै होय सो भला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी कै एकै रंग ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहंग बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी कै कार सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी कै होय अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाई है ब्रह्म ज्ञानी कौ खोजै महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जानै भेद ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाय अध्याखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखानै ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवै नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता
ब्रह्मज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्मज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्मज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्मज्ञानी की शोभा ब्रह्मज्ञानी बनी, नानक ब्रह्मज्ञानी सर्व का तनी सलोक, उतारे जो अंतर नाम सर्म पेख है भगवान, नेमख नेमख ठाकुर नाम सुकार, नानक ओह अपरस सगल ने सुतार, अष्टपदी मिथ्या नाही रस न परस, मन में प्रीत निरंजन दर्स, परत्र रूप न निपेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत, करन न सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा, गुरु प्रसाद बिखिया पर हरे, मन की बाशना मन ते टरे, इंद्री जेत पंच दोख ते रहत, नानक कूट मध्य को ऐसा अपरस, वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न, बिस्न की माया ते होए भिन्न, कर्म करत हुए निह कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल धर्म, काहू फल की इच्छा नहीं बाछ, केवल भगत कीर्तन संग रचह, मन तन अंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल, आप दृढ़ अवरा नाम जपावै, नानक ओ वैष्णो परम गत पावै, भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै, दुष्ट का संग मन ते बिनसै, सगला भरम कर पूजै, सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै, तिस भगवती की मत उत्तम होवै, भगवंत की टहल करै नित नीत, मन तन अर्पै बिसन प्रीत, हर के चरण हृदय बसावै, नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावै, सो पंडित जो मन प्रबोधै, राम नाम आत्म मैं सोधै, राम नाम सार रस पीवै, उस पंडित कै उपदेश जग जीवै, हर की कथा हृदय बसावै, सो पंडित फिर जून न आवै, वेद पुराण सिमरत बूजै मूल, सूखम मैं जानै असथूल, चौवरना को दे उपदेश, नानक उस पंडित कौ सदा आदेश, बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना मैं जपै को नाम, जो जो जपै तिस की गत होए, साध संग पावै जन कोए, कर कृपा अंतर उतारै, पास प्रेत मुगद पाथर कौतारै, सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम, काहू जुगत कितै न पाइय धर्म, नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिस का नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतन पाए तिन पाया, सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगै प्रवान, अपने दास को आप कृपा करै, तिस दास को सब सो जी परै, सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास, प्रभु की आज्ञा आत्म हितावै, जीवन मुकत सो कहावै, तैसा हरख तैसा उस सोग, सदा आनंद तह नहीं वियोग, तैसा सुवर्ण तैसी उस माटी, तैसा अमृत तैसी भी खुखाटी, तैसा मान तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान, जो वर पाए साई जुगत नानक, ओ पुरख कही है जीवन मुक्त, पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित घर रखे तैसा तिन नाओ, आपे करन करावन जोग, प्रभ पावै सोई फुन होग, पसरे ओ आप होए अनत तरंग, लखी न जाहे पार ब्रह्म के रंग, जैसी मत दे तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अविनाश, सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल, सलोक उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारावार, नानक रचना प्रभ रची बहुविध अनक प्रकार, अष्टपदी कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी, कई कोट पै तीर्थवासी, कई कोट बान प्रमय उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत्म ध्यान तहरै, कई कोट कब काप विचारै, कई कोट नवतन नाम तिहावै, नानक करते का अंत न पावै, कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपेग आत्म ने कोर, कई कोट पर दर्प कोहिरै, कई कोट पर दुख न करै, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट प्रदेश प्रमाहे, जित जित लावहो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति जोगी, कई कोट राजी रास भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंत्र, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नखयत्र, कई कोट देवदानव इंद्र सिर शत्र,
ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੇ ਸੂਤ ਧਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਤਿਸ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਰਾਜਸ ਤਾਮਸ ਸਾਤਕ, ਕਈ ਕੋਟ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਅਰਸਾਸਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਰਤਨ ਸੁਮੰਦ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਚੈਰ ਜੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਿਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਖ ਹੈ ਕਿਨਰ ਪਿਸਾਚ, ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਕਰ ਮਿਰਗਾਚ, ਸਭ ਤੇ ਨਿਰੈ ਸਭ ਹੂੰ ਤੇ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਅਲਿਪਤ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਤਾਲ ਕੇ ਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਜਨਮੈ ਜੀਵੈ ਮਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬਹੁਜੋਨੀ ਫਿਰੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਬੈਠਤ ਹੀ ਖਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਘਾਲੈ ਥੱਕ ਪਾਹੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਏ ਤਨਵੰਤ, ਕਈ ਕੋਟ ਮਾਇਆ ਮਹਿ ਚਿੰਤ, ਜਹਿ ਜਹਿ ਭਾਣਾ ਤਹਿ ਤਹਿ ਰਾਖੇ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਕਿਛ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਹਾਥੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਭਏ ਬੈਰਾਗੀ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤਿਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਕਈ ਕੋਟ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਖੋਜੰਤੇ, ਆਤਮ ਮੈਂ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲਹੰਤੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਸ, ਤਿਨ ਕੋ ਮਿਲਿਓ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਕਈ ਕੋਟ ਮੰਗੈ ਸਤ ਸੰਗ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤਿਨ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਜਿਨ ਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਬਿਸਥਾਰ, ਕਈ ਵਾਰ ਪਸਰਿਓ ਪਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਕੋ ਓਂਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਭ ਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੇ ਸਮਾਤ, ਤਾਕਾ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ ਸਦਾ ਨਿਹਾਰ ਰਹਿ ਏਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਅਮਰ ਪੈ ਸਦ ਸਦ ਹੀ ਜੀਵੈ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਆਤਮ ਰਸ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵੈ, ਆਪੋਨੇ ਜਨ ਕਉ ਸਾ ਸਾ ਸੁਮਾਰੀ, ਨਾਨਕ ਓਏ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਸਲੋਕ, ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਬਲਹਾਰਣ ਹੈ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀ ਅਲ ਸੋਏ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਕਰਣੇ ਜੋਗ, ਜੋਤਿ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਥਾਪ ਉਥਾਪਨ ਹਾਰਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰਾ, ਹੁਕਮੇ ਧਾਰ ਆਧਾਰ ਰਹਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੈ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੈ, ਹੁਕਮੇ ਊਚ ਨੀਚ ਵਿਵਹਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਆਪਣੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਭ ਮੈਂ ਰਿਆ ਸਮਾਈ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਮਨੁਖ ਗਤ ਪਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਬਿਨ ਸਾਸਤੀ ਰਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੈ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਾਂ ਪਤਤ ਉਧਾਰੈ, ਆਪ ਕਰੈ ਆਪਨ ਵਿਚਾਰੈ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੈ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੈ ਸੂਕਾਰ ਕਰਾਵੈ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੈ, ਕਹੋ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਾਵੈ, ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛੁ ਲੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨਤ ਬਿਖਿਆ ਮੈਂ ਰਚੈ, ਜੇ ਜਾਣਤ ਆਪਣ ਆਪ ਬਚੈ, ਭਰਮੇ ਭੂਲਾ ਦੈਦ ਸਤਾਵੈ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੇ ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਫਿਰ ਆਵੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਨਾਮ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕਉ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਜਾ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਛੂ ਨਾ ਆਵੈ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਦੈਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੈ, ਜਾ ਕਉ ਆਪਣੇ ਕਰੈ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਗਨੈ ਜਗਦੀਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਆਪਣੀ ਬਣਤ ਆਪ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਦੇਖ ਵਡਾਈ, ਇਸਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਇਸ ਹਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀਓ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਫੁਨ ਥੀਓ, ਕਬਹੂੰ ਊਚ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਬਹੂੰ ਸੋਗ ਹਰਖ ਰੰਗ ਹਸੈ, ਕਬਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਬਹੂੰ ਊਬ ਆਕਾਸ਼ ਪਿਆਲ, ਕਬਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਆਪ ਮਿਲਾਵਣ ਹਾਰ, ਕਬਹੂੰ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਬਹੁ ਭਾਂਤ, ਕਬਹੂੰ ਸੋਏ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਬਹੂੰ ਮਹਾਂਕ੍ਰੋਧ ਬਿਕਰਾਲ, ਕਬਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਹੋ ਤਰਵਾਲ, ਕਬਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬਡ ਰਾਜਾ, ਕਬਹੂੰ ਬੇਖਾਰੀ ਨੀਚ ਕਾ ਸਾਜਾ, ਕਬਹੂੰ ਆਪ ਕੀਰਤ ਮੈਂ ਆਵੈ, ਕਬਹੂੰ ਭਲਾ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵ ਹੀ ਰਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੈ, ਕਬਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਮੋਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੈ ਧਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਤਟ ਤੀਰਥ ਇਸਨਾਨ, ਕਬਹੂੰ ਸਿੱਧ ਸਾਧਿਕ ਮੁਖ ਗਿਆਨ, ਕਬਹੂੰ ਕੀਟ ਹਸਤ ਪਤੰਗ ਹੋਏ ਜੀਆ, ਅਨਕ ਜਿਉਣ ਭਰਮੈ ਪਰਮੀਆ, ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੋ ਸੁਆਂਗੀ ਦਿਖਾਵੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਆਵਰ ਨਾ ਕੋਏ।
ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਏ ਪਾਵੈ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਆਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ਼ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਇੱਕ ਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੈ ਸੰਗ ਜਿਉਂ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉਂ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਦ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮਸਕੀਨੀਆ ਆਪ ਨਿਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨਕ ਗਰਭ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜਿਸ ਕੈ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਨਰਕ ਪਾਪੀ ਹੋਵਤ ਸਵਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋਵਨਵੰਤ ਸੋ ਹੋਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕਉ ਕਰਮਵੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੈ ਬਹੁ ਜੂਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮਿਕਾ ਜੋ ਕਰੈ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਕੈ ਹਿਰਦੈ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੈ ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਆਗੈ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਧਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਭਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਸ਼ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸਕਰ ਮਾਨ ਹੋ ਉਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਲ ਭੀਤਰ ਤਾਕਾ ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੈ ਬਲਵੰਤ ਖਿੰਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੈ ਨਾ ਬਦੈ ਆਪ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾ ਕਾ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰਗਹਿ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਮ ਕਰੈ ਹਉ ਧਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੈ ਸਗਲੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੈ ਅਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਰ ਆਤਮ ਨਹੀਂ ਦਰਵੈ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਹੁ ਕੈਸੀ ਗਵੈ ਆਪਸ ਕਉ ਜੋ ਭਲਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੈ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕੀ ਰੇਨ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਤਾਲ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੋਏ ਜਬ ਲਗ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਬ ਇਸ ਕਉ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਜਬ ਇਹ ਜਾਣੈ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੈ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗ ਨਿਹ ਚਲ ਨਾਹੀ ਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮਗਨ ਸੰਗ ਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇ ਸਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਹਉ ਛੂਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲੱਖ ਕਉ ਉਠ ਧਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੀ ਕਰੈ ਨਹਿ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ ਖਪ ਖਪ ਮਰੈ ਬਿਨਾ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਬਡਭਾਗੀ ਕਿਸੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਆਪੇ ਆਪ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਹਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸ ਕੈ ਹਾਥ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਜੋ ਕੇ ਸ਼ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭ ਹੂੰ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੇ ਬਬੇਕ ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰੇ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਹੀ ਰਹਿਆ ਸਮਾਏ ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ ਆਪ ਕਿਨੋ ਆਪਣ ਬਿਸਥਾਰ ਸਭ ਕਾਸ਼ ਉਸ ਕਾ ਉਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸ ਤੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ ਹੋਏ ਥਾਂ ਤਨੰਤਰ ਏਕੈ ਸੋਏ ਆਪੋ ਨੇ ਚਲਿਤ ਆਪ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੌਤਕ ਕਰੇ ਰੰਗ ਅਪਾਰ ਮਨ ਮਹਿ ਆਪ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀਨਾ ਕੋਟ ਮਧੇ ਕਿਨੇ ਬਿਰਲੈ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਅਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਘਟ ਘਟ ਸੁਨੀ ਸ੍ਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਣ ਜੋ ਜਨ ਪਰੈ ਸੋ ਜਨ ਉਦਰਣ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬਹੁਰ ਬਹੁਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਆਰ ਜਾ ਘਟਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਜਮ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੁਟਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੁਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਮਤ ਹੋਈ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕਉ ਰੱਖੇ ਨਾ ਕੋਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਭੀ ਤਰੈ ਸੰਤ ਕੇ ਦੂਖਨ ਤੇ ਮੁਖ ਭਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਕਾਗ ਜਿਉ ਲਵੈ ਸੰਤਨ ਕੈ ਦੂਖਨ ਸਰਪ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕੈ ਦੂਖਨ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ
संतन कै दुखन तृष्णा बै जलय, संत कै दुखन सब को शलय, संत कै दुखन तेज सब जाय, संत कै दुखन नीच निचाय, संत दुखी का थाओ को नाहे, नानक संत पावे ता ओय पी गत पाहे, संत का निंदक महा तताई, संत का निंदक खिन टिकन न पाई, संत का निंदक महा हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा, संत का निंदक राज ते हीन, संत का निंदक दुखियार दीन, संत के निंदक को सर्व रोग, संत के निंदक को सदा बिजोग, संत की निंदा दुख मैं दुख, नानक संत पावे ता उसका पी हुए मोख, संत का दुखी सदा अपवित, संत का दुखी किसे का नहीं मित, संत के दुखी कौ डान लागे, संत के दुखी कौ सब त्यागे, संत का दुखी महा अहंकारी, संत का दुखी सदा बिकारी, संत का दुखी जन्म मरह, संत की दुख ना सुख ते टरह, संत के दुखी कौ नाही ठाहु, नानक संत पावे तन लय मिलाए, संत का दुखी अद बीच ते टूटे, संत का दुखी कितै काज ना पहुचै, संत के दुखी कौ ध्यान परमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, ज्यों सास बिना मेरे तक की लोथा, संत के दुखी की जड़ किश नाहे, अपन बीज आपे ही खाहे, संत के दुखी को अवर न रखन हार, नानक संत पावे था ले उबार, संत का दुखी इयों बिल लाए, ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दुखी भूखा नहीं राजै, ज्यों पावक ईदन नहीं त्रापै, संत का दुखी छुटे केला, ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी साध मिथ्या कहत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानक ज्योतिष पावै सोई थिया, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी कौ दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत कै दुख न त्रष्ट है कोई, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मेटै कोई, नानक जाने सच्चा सोए, सब कहट तिस क्यो करने हार, सदा सदा तिस को नमस्कार, प्रभ की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्यावो सास गिरास, सब काश वरतै तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, आप अपना खेल आप करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनों कृपा करे तिस आपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से सलोक, तजहो सियानप सुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पाओ जाए, अष्टपदी मानुख की टेक वृथि सब जान, देवन को एक है भगवान, जिसके दिए रहे अघाए, बहुर न तृष्णा लाग आए, मारे रख है कुआप, मानुख कै किश नाही हाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोए, उस्तत मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर लेह जियो, नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग, चरण चालो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिय हर बिंद, कर हर कर्म श्रवण हर कथा, हर दरगह नानक उजल मथा, बडभागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करह विचार, से तनवंत गने संसार, मन तन मुख बोले हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी, एको एक एक पछाने, एत उत कियो सच जी जाने, एको एक एक पछाने, एत उत कियो सो जी जाने, नाम संग जिसका मन मानिया, नानक तिने निरंजन जानिया, गुरप्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर जस कहत, सर्व रोग त्यो हर जन रहत, आन दिन कीर्तन केवल बख्यान, ग्रस्त में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आशा, तिसकी कटिया जम की फासा पार, ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिस न लागै दुख,
जिस को हर प्रभ मन चित आवै सो संत सुहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किस ते डरै जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किश मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किश जन्मै नह किश मरै आपन चालित आप ही करै आवन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल मैं आप अनेक जुगत रच थाप उथाप अविनाशी नाही किश खंड धारण कर रहे हो ब्रह्मांड अलख अपेव पुरख प्रताप आपज पायत नानक जाप जिन प्रभ जाता सुसु बावंत सगल संसार उदर है तिन मंत प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल लय कृपाल गुरु का शब्द जप भय निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनो कृपा करै बड़ पागै नाम जपत पावै विश्राम नानक तिन पुरख कौ उत्तम करमान जो किश करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिस ते उपजे तिस माहे समाए वे सुख निधान उनहु बन आए आपस को आप दीनो मान नानक प्रभ जान एको जान सलोक सर्ब कला भरपूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उतरी है नानक तिस बलहार अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्ब जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिस ते बिरथा कोई नाहे रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप आपन किया कशु न होए जे सो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरा किश काम गत नानक जाप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जोत सगल घाट सो है धनवंता होए क्या को गर्भ जा सब किश तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बहे दातार तिस देन हर जान गावार जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग नानक सो जान सदा आरोग ज्यो मंदर को थामै थम्मन त्यों गुर का शब्द मनै अस थम्मन ज्यों पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस तरै ज्यों अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास ज्यों महा उद्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावै तिन संतन की भाषा तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिल लाइयै पुरब लिखिका लिखिया पाइयै दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तू तिसै चितार जो काश करै सोई सुख मान भूला काहे फिरै अजान कौन बस आई तेरै संग लपट रहो रस लोभी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती घर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया ताज अभिमान लेहो मन मोल राम नाम हिरदे मैं तोल लाद खेप संतै संगचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कहे सब कोए मुख उजल हर दरगै सोए एहो वापार विरला वापारै नानक ताकै सद बलहारै चरण साध के तोए तोए पियो अर्प साध कौ अपना जियो साध की धूर करो इशनान साधु प्रजाइय कुरबान साध सेवा बडभागी पाइय साध संग हर कीर्तन गाइय अनक बिघन ते साधु रखै हर गुण गाए अमृत रस चाखै ओट गही संतै दर आया सर्ब सुख नानक ते हे पाया मेरतक कौ जीवालन हार भूखे कौ देवत आधार सर्ब निधान जापी दृष्टि माहे पुरब लिखे का लहना पाहे सब किश तिस का ऊ करणै जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रहनी सब ते उच निर्मल एह करनी।
कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सो जन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रभ चीत भगत भगत सुनिए तेहो लोए जाके हृदय एको होए सच करनी सच ताकी रहत सच हृदय सतमुख कहत साची दृष्ट साचा आकार सच वर्तै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता सलोक रूप न रेख न रंग किश त्रेह गुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाए नानका जिस हुवै सो प्रसन्न अष्टपति अबिनासी प्रभ मन में राख मानुख की तू प्रीत त्याग तिस ते परै नाही किश कोए सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सो जाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बखसंद साध तेरे की चरणी पाओ नानक कै मान एहो अनराओ मनसा पूर्ण सरणा जोग जो कर पाया सोई होग हरन परन जाका नेत्र फोर किसका मंत्र न जाने होर आनंद रूप मंगल साध जाकह सर्व थोक सुनिए घर ताकह राज मैं राज जोग मैं जोगी तप मैं तपीसर ग्रस्त मैं भोगी त्याए त्याए भगत है सुख पाया नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया जाकी लीला की मित नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जन पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिन दे जन दास नाम त्या वैसे तेह गुण में जाको परमाए जन्म मर फिर आवै जाए ऊंच नीच तिसके अस्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करै एक रंग नाना वेद की नो बिसथार प्रभ अभिनाशी एकंकार नाना चालित करे खिन माहे पूर रहे उ पूर्ण सब ठाए नाना बेद कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के धारे सगले जंत नाम के धारे खंड ब्रह्मांड नाम के धारे सिमरत वेद पुराण नाम के धारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के धारे आकाश पताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम कै संग उधरे सुन श्रवण कर कृपा जिसे अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे समाणी सत करम जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुरु ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जाके हृदय प्रवेश सत निरत बुझै जे कोई नाम जपत ताकि गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपने मित गत जिसकी सृष्ट सो करणे हार अवर न बूझ करत बिचार करते कि मित न जाने किया नानक ज्योतिष भावै सो वर्तिया बिसमन बिसम पय बिसमात जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राज जन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख काटन हार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो बड़ भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पेह सच नानक होसी पेह सच अष्टपदि चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत त्यावनहार आप सत सत सब तारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुजन हार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जिन मान्या करण करावन तिन मूल पछान्या जाकर हृदय विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपौ होए बसाना जिस ते उपजिया तिस माहे समाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको भिन्न न कहना जाई
ਬੂਝੈ ਬੂਝਣ ਹਾਰ ਬਪੇਕ, ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੁਜਾਰੀ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ, ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨ ਹਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ। ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਸ ਸਾਸ ਮਾਰੈ। ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਰ ਪਰ ਰੱਖੈ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇ ਵਡਾਈ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਖੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਕਾਉ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਊਚ ਤੇ ਊਚੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਨੇਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ, ਭਾਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਖੈ। ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸਨ ਕਢਤ ਆਪ, ਤਾ ਕਉ ਰਾਖਤ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਥ। ਮਾਨਸ ਜਤਨ ਕਰਤ ਬਉ ਭਾਂਤ, ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ। ਮਾਰੇ ਨ ਰਾਖੈ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ, ਸਰਬ ਜੀਆਂ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ। ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਅਲਖ ਵਿਡਾਣੀ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹੋ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਤਿਸ ਕਿਸ਼ੀ ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ। ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ, ਨਾਮੋ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਕਰ ਸੰਗ। ਨਾਮ ਰਸ ਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ, ਮਨ ਤਨ ਨਾਮੇ ਨਾਮ ਸਮਾਨੇ। ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੁਵਤ ਨਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸਦ ਕਾਮ। ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੀਬਾ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀ ਦਾਤ। ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹੇ ਸਮਾਏ। ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ। ਤਿਸ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਖਾਨੋ, ਤਿਸ ਕਾ ਗੁਣ ਕਹੇ ਇਕ ਨਾ ਜਾਣੋ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਪ੍ਰਭ ਬਸੈ ਹਜੂਰੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੇਈ ਜਨ ਪੂਰੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਓਟ ਲੇ, ਮਨ ਤਾਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿਨ ਜਨ ਦੇ। ਜਿਨ ਜਾਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ, ਸੋ ਜਨ ਸਰਬ ਥੋਕ ਕਾ ਦਾਤਾ। ਤਿਸ ਕੀ ਸਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਦਰਸ ਸਭ ਪਾਪ ਮਿਟਾਵੈ। ਅਵਰ ਸਿਆਣਕ ਸਗਲੀ ਛਾਡ, ਤਿਸ ਜਨ ਕੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾਗ। ਆਵਣ ਜਨ ਹੋਵੀ ਤੇਰਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜਾ ਸਦ ਪੈਰਾ। ਸਲੋਕ ਸਤਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਰੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਸੇਵਕ ਕਉ ਗੁਰ ਸਦਾ ਦਇਆਲ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗੁਰ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰੈ, ਗੁਰ ਬਚਨੀ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਰੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਟੈ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਹਟੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੋ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ, ਗੁਰ ਕਾ ਸਿੱਖ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕਉ ਜੀ ਨਾਲ ਸਮਾਰੈ। ਗੁਰ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਵਕ ਜੋ ਰਹੈ, ਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਹੈ। ਆਪਸ ਕਉ ਕਰ ਕਛੁ ਨਾ ਜਨਾਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਧਿਆਵੈ। ਮਨ ਬੇਚੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪਾਸ, ਤਿਸ ਸੇਵਕ ਕੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਇ ਨਿਹ ਕਾਮੇ, ਤਿਸ ਕਉ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਗੁਰ ਕੀ ਮਤ ਲੇ। ਬੀਸ ਬਿਸਵੇ ਗੁਰ ਕਾ ਮਨ ਮਾਨੈ, ਸੋ ਸੇਵਕ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਕੀ ਗਤ ਜਾਣੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਹਰ ਨਾਉ, ਅਨਕ ਬਾਰ ਗੁਰ ਕਉ ਬਲ ਜਾਉ। ਸਰਬਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਆਰ, ਸਰਬਨਿਧਾਨ ਜੀ ਕਾ ਦਾਤਾ ਆਠ ਪਹਿਰ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਮੈਂ ਜਨ ਜਨ ਮਹਿ ਪਾਰ, ਬ੍ਰਹਮ ਇਕ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਛ ਭਰਮ। ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਗੁਰ ਬਡਭਾਗੀ ਪਾਈਏ। ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਖਤ ਪੁਨੀਤ, ਪਰਸਤ ਚਰਨ ਗਤ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਭੇਟਤ ਸੰਗ ਰਾਮ ਗੁਣ ਰਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਦਰਗਾਹ ਗਵੇ। ਸੁਣ ਕਰ ਬਚਨ ਕਰਨ ਆਗਾਨੇ, ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਆਤਮ ਪਤਿਆਨੇ। ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਆਖਿਆਉ ਜਾ ਕਾ ਮੰਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪੇਖੈ ਹੋਏ ਸੰਤ। ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਲਏ ਮਿਲਾਏ। ਜੇ ਬਾ ਏਕ ਉਸਤਤ ਅਨੇਕ, ਸਤਿਪੁਰਖ ਪੂਰਨ ਬਬੇਕ। ਕਾਹੂ ਬੋਲ ਨਾ ਪਉਚਿਤ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਨਿਰਾਹਾਰ ਨਿਰਵੈਰ ਸੁਖਦਾਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ।
अनेक भगत बंदन नित करै चरण कमल हिरदय सिमरै सद बलहारी सत गुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावै जन कोए अमृत पीवै अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुण तास आठ पहर हर का नाम ले साच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग न लेप मन में राखै हर अंधकार दीपक प्रगासे नानक भरम मोह दुख तहते नासे तपत माहे ठाण वरताई आनंद भया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरन उपदेसे भौ चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा धारी साध संग जप नाम मुरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पियो ही कलातार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर बिन निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग भय प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कलतारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चलै बिन भजन बिख्या सगली शार हर हर नाम कुमावना नानक एहो धन सार अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाप सब मीत बिसारो चरण कमल रिद में उरतहारो करुण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ एहो धन संचो हो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंठ उठता वै सो तन हर सेवा ते पावै जिस सुख को नित बाछ मीत सो सुख साधु संग परीत जिस सोबा को करै भले करणी सा सोबा भज हर की सरणी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखत लाए सर्व निधान मैं हर नाम निधान जप नानक दरगह परवान मन प्रभु तो हर कै नाए दैत सतावत आवै ठाए ताको बिघन लागै कोई जाकै हृदय बसै हर सोए कल ताती ठंडा हर नाओ सद सिमर सिमर सदा सुख पाओ भौ बिन सह पूरन होए आस भगत पाए आत्म प्रगास तित कर जाए बसै अविनाशी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कहे जन साचा जन्म मरै सो काचो काचा आवा गवन मिटै प्रभ सेव आप त्याग शरण गुरुदेव इउं रतन जन्म का हुए उदार हर हर सिमर प्राण आधार अनको पावना छूटन हारे सिमरत शास्त वेद बिचारे हर की भगत करो मन लाए मन बंशत नानक फल पाए संग न चाल सतीरै तना तू क्या लपटावै मूर्ख मना सोत मीत कुटुंब अरबनता इनते कहो तुम कवन सनाथा राज रंग माया बिसथार इनते कहो कवन छुटकार अस हस्ती रथ असवारी झूठा डंप झूठ पासारी जिन दिए तस बुझे ना बिगाना नाम बिसार नानक पछताना गुर की मत तू ले आने भगत बिना बौ डूबे स्याने हर की भगत करो मन मीत निर्मल होए तुम्हारो चीत चरण कमल राखु मन माहे जन्म जन्म के किल बिख जाहे आप जप हो अवरा नाम जपा वहो सुनत कहत रहत कत पावहो सार भूत सत हर को नाओ सह सुभाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उतर सुमैल बिन सुजाए हो मैं बिख फैल हो हे अचिंत बसै सुख नाल सास ग्रास हर नाम समाल शाड़ सयान पसगली मना साध संग पावै सच तना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहां सुख दरगै जयकार सर्ब निरंतर एको देखो कहो नानक जाकै मस्तक लेखो एको जप एको सालाहे एक सिमर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एको एक हर आप पूरन पूर रहे वो प्रभ व्याप अनक बिसथार एक ते पय एक आराध पराशत गए
मानता ने अंतर एक प्रभराता गुरु प्रसाद नानक एक जाता श्लोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तो सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभ दान कर कृपा देव हर नाम सात जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरे सरदा पूर सदा सदा प्रभ की गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल सिंह लागै प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महासुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन च्याखे आसे जन त्रिपता ने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुपर परे प्रेम रस रंग उपजे चाउ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रकाश आन दिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पही सतगुरु ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयाल सेवकी नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया ऐश पुनी सरदा सब पूरी रब रहया सतसंग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पहनै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मैं राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिख ते काटै जन्म जन्म का टूटा गांडै गुरपूरै तत एह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जप हो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपहो अवरा नाम जपावहो भगत पाए तरिये संसार बिन भगति तन हो सी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख काहो वतनास नानक नाम जपो गुण तास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्रों पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कु पावै संग एक बस्त दीजै करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बख्शंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व घटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमक हर के गुण गाए अनक राज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत भली सो करनी सोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहु निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप अपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब अकार एक अशना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समात तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन न जापत तब हरक सोग कहो किसे व्यापत जब आपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत परम अपन केर आप वरती जा नानक करने हार न दूजा जब हो वत प्रभ केवल तनी तब बंद मुकत कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुबाए तब सेव साकत कहो कि तठाए जब आप हे आप हो अपनी ज्योत तरह तब कवन निडर कवन कत डरै आपन चालित आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार
अबिनासी सुख आपन आसन तह जन्म मरण कहो कहा बिनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगित अगोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर आगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपन आप आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही ऊपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगत।

मिटता है, प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै, जिस प्रभ राखै तिस नाहीं दुख, नाम जपत मन होवत सुख, चिंता जाए मिटै अहंकार, तिस जन को कोई न पौचन हार, सर ऊपर ठाडा गुर सूरा, नानक ताके कारज पूरा, मत पूरी अमृत जाति दृष्ट, दर्शन पेखत उधरत श्रेष्ठ, चरण कमल जाके अनूप, सफल दर्शन सुंदर हर रूप, तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी पुरख प्रधान, जिस मन बसै सो होत निहाल, ताकै निकट न आवत काल, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर तिहाया, श्लोक ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगासु, अष्टपदी संत संग अंतर प्रबडीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा, सगल समग्री एक स्पट माहे, अनक रंग नाना दृष्टाए, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम, सुन समाद अनहत तह नाद, कहन ना जाई अचरज विस्माद, तिन देखिया जिसे आप दिखाए, नानक तिस जन सो जी पाए, सो अंतर सो बाहर अनंत, कट कट ब्या प्रहया भगवंत, तरण माहे आकाश पयाल, सर्वलोक पूरन प्रतपाल, बान तीन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म, पौन पणि बैसंत्र माहे, चार कुंट दै दिसे समाहे, तिस ते भिन्न नहीं कोठाओ, गुरप्रसाद नानक सुख पाओ, वेद पुराण सिमरत मैं देख, ससी अर सूर नखत्र मैं एक, बाणी प्रभ की सब को बोले, आप अडोल न कबहू डोले, सर्ब कला कर खेले खेल, मोल ना पाया गुण अमोल, सर्ब ज्योत मैं जाकी ज्योत, तार रहे हो स्वामी ओत पोत, गुर प्रसाद परम का नास, नानक तिन मैं एहो विश्वास, संत जना का पेखन सब ब्रह्म, संत जना कै हृदय सब धर्म, संत जना सुनै शुभ बचन, सर्व व्यापी राम संग रचन, जिन जाता तिस किए रहत, सत बचन साधु सब कहत, जो जो होए सोई सुख मानै, करन करावन हार प्रभ जानै, अंतर बसे बाहर पी ओही, नानक दर्शन देख सब मोही, आप सत किया सब सत, तिस प्रभ ते सगली उत्पत, तिस भावे ता करे विस्थार, तिस भावे ता एकंकार, अनक कला लखी नह जाए, जिस भावे तिस लय मिलाए, कवन निकट कवन कहिए दूर, आपे आप भरपूर, अंतरगत जिस आप जनाए, नानक तिस जने आप बुझाए, सर्वभूत आप वरतारा, सर्व नैन आप पेखनहारा, सगल समग्री जाता तना, आपन जस आप ही सुना, आवन जान एक खेल बनाया, आज्ञाकारी कीनी माया, सब कै मध अलिप तो रहै, जो किश कहना सो आपे का है, आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नानक जा पावे ता लय समाए, इसते होए सुना ही बुरा, उरै कहो किने का शुकर, आप भला करतूत अत नीकी, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत अपन संगराच, ताकी गत मित कही न जाए, दूसर होए ता सो जी पाए, तिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक एहो जान, जो जानै तिस सदा सुख होए, आप मिलाए लय प्रभ सोए, ओह धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुकत जिस हृदय भगवंत, धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया, जन आवन का इह सुआओ, जन कै संग चित आवै नाओ, आप मुकत मुक्त करै संसार, नानक तिस जन कौ सदा नमस्कार, सलोक पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाऊ, नानक पूरा पाया,
पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुरु का सुनो उपदेश, पार ब्रह्म निकट कर पेख, सास सास सिमरो गोबिंद, मन अंतर की उतरै चिंद, आस अनित त्यागो तरंग, संत जना की धूर मन मंग, आप छोड़ बेनती करहो, साध संग अग्न सागर तरहो, हर तन के पर लिहो भंडार, नानक गुर पूरे नमस्कार। खेम कुशल सहज आनंद, साध संग भज परमानंद, नरक निवार उधारो जियो, गुण गोबिंद अमृत रस पियो। चित चितव नारायण एक, एक रूप जाके रंग अनेक, गोपाल दमोदर दीन दयाल, दुख भंजन पूरन कृपाल। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार, उत्तम श्लोक साध के बचन, अमूलिक लाल यह रतन। सोनत कमावत हो तो उदार, आप तर लोकह निस्तार, सफल जीवन सफलता का संग, जाके मन लागा हर रंग। जय जय शब्द अनाहद वाजय, सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजय, प्रगटे गोपाल महात कै माथे, नानक उदरे तिन कै साथे। सारन जोग सुन सरनी आए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, मिट गए बैर पये सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन। सो प्रसन्न पये गुरुदेव, पूरन होई सेवक की सेव, आल जंजाल बिकारते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निभी खेप हमारी। प्रभ की उस्तत करहो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुख मने सहज गोबिंद गुण नाम, जिस मन बसै सोहोत निधान, सर्व इच्छा ताती पूरन होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते उच पाए अस्थान, बहुर न होवै आवन जान, हर धन खाट चले जन सोए, नानक जिसै प्राप्त होए। खेम सांत रिद नव निद, बुद्ध ज्ञान सर्वतः सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत का बेता, समदर्शी एक दृष्टेता, ए फल तिस जन कै मुख पने, गुरु नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब युग में ताकि गत होए, गुण गोबिंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोबिंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटाय, संत कृपा ते जमते छुटाय, जाके मस्तक करम प्रभ पाए, साध शरण नानक ते आए। जिस मन बसै सुने लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलभ देह तत्काल उधारै, निर्मल शोभा अमृत ताकी बानी, एक नाम मन माहे समानी, दुख रोग बिन से पै परम, साधनाम निर्मलता के कर्म, सब ते ऊचता की शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सब ते ऊच ताकी शोभा बनी, नानक ए गुण नाम सुख मनी, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जा करता सिर ठीक सा जी आपे जाने सुई किव करे आखा किव सालाही क्यों वरनी किव जाना नानक आखन सब को आख एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जाका हुए नानक जी को आपो जाने अगे गया न सू है पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कह निकवात सहस अठारह कहन कतिबा असलू एक धात लिखा हुए तां लिखी है लिखे हुए विनाश नानक वड्डा आखी है आपे जाने आप सालाही ती सुरत न पाईया नदियां अते वाह पवह समुंद न जानी है समुंद सह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुलना होवनी जे तिस मनु न विसर है अंत न सिफती कह न अंत अंत न करने दे न अंत अंत न वेखण सुन न अंत अंत न जापै क्या मन मंत अंत न जापै कीता आकार अंत न जापै पारावार अंत कारण किते बिललाहे

सोहन सदा सुवारे गावै इंदिंद आसन बैठे देवते आदर नाले गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सुति संतोखी गावै वीर करारे गावन पंडित पणनर कीसर जुग जुग वेदा नाले गावै मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले गावन रत्नो पाए तेरे अठ सठ तीर्थ नाले गावै जोत महाबल सूरा गावै गाणी चारे गावै खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे सेई तुदनु गावै जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पीहु सी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेख कीता अपना जिव तिस्ती वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई सो पातशाहो साहा पात साहिब नानक रह नरजाई मुंदा संतोख शरम पत झोली ध्यान की करह विभूत किंता काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जगजीत आदेश तिसै आदेश आदन ईलन आदन आहत जुग जुग एको वेश भुगत गया दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग विजोग दुकार चलावह लिखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदन ईलन आदन आत जुग जुग एको वेश एका माई जुगत वे आई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी चलाई दीवान जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै ओना नजर न आवै बहुता इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्ची की साची कार आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेश एक दूजी भव लख होए लख हो वह लख वीस लख लख गेड़ा आखी है एक नाम जगदीश एत राहे पत पवड़िया चढ़िया हुए कीस सुन गल्लाया काश की कीटाया रीस नानक नदरी पाई है कूड़ी

बाल मंसूर, जोर न सुरती ज्ञान विचार, जोर न जुगती छुट्टे संसार, जिस हथ जोर कर वेख सोए, नानक उत्तम नीच न कोए, राती रुती तिती वार, पवन पानी अग्नि पाताल, तिस विच धरती थाप रखी धर्मसार, तिस विच जी जुगत के रंग, तिनके नाम अनेक अनंत, करमी करमी हुए विचार, सच्चाप सच्चा दरबार, तिथै सोहन पंच प्रवान, नदरी करम पवै निशान, कच पकाई उथै पाए, नानक गया जापै जाए, धर्म खंड काय हो धर्म, ज्ञान खंड का आको कर्म, केते पवन पाणी वै संतर, केते कान महेश, केते बरमे काढ़त घड़िय रूप रंग के वेश, केतिया करम भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुधनाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दान मन केते, केते रतन समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेव केते, नानक अंत नंत, ज्ञान कंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड आनंद, शर्म खंड की बाणी रूप, तिथै काढ़त घड़िया बहुत अनूप, ताकिया गल्ला कथिया न जाहे, जी को कह पिछे पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सिद्धा की शुद्ध, कर्म कंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोत महाबल सूर, तिन मह राम रहा भरपूर, तिथै सीतो

मन वाही तिथे भगत वसह के लोग करह आनंद सच्चा मन सोए सच खंड वसह निरंकार कर कर विखे नदर निहाल तिथे खंड मंडल वर भंड जी को कथे तंत अनंत तिथे लो लो आकार जिव जी हुकुम तिवै तिवकार विखे विकसै कर विचार नानक कतना करड़ा सार जत पहारा धीर सुनियार अहरन मत वेद हथियार पाओ खलागन तपताऊ भांडा पाओ अमृत तित ढाल घड़िया शब्द सची टकसाल जिनको नदर कर्म तिनका।

त्रिमान है, निदान है, त्रिवर्ग है, असर्ग है, अनीड है, अनाद है, अजय है, अजाद है, अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अपर्ण है, अगंज है, अपांज है, अचूज है, अचांज है, अमीक है, रफीक है, अतंध है, अबंध है, निर्भूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है, अलाह है, अजा है, अनंत है, महंत है, अलीक है, निरसीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अछूत है, अलोक है, असूक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगा है, अमान है, निदान है, अनेक है, विरेक है, पुजंग प्रयाचंद नमो सर्वमान्य समस्ति निदानी नमो देव देवे अपेक्षी अपेवे नमो काल काले नमो सर्व पाले नमो सर्व गौणे नमो सर्व पौणे अनंगी अनाथे निसंगी परमाते नमो पान पाने नमो मान माने नमो चंद्र चंद्रे नमो पान पाने नमो गीत गीते नमो तान ताने नमो नृत नृत्य नमो नाद नादे नमो पान पाने नमो बाद बादे अनंगी अनामे समस्ती स्वरूपे परपंगी परमाते समस्ती बेपूते कलंकं बिना ने कलंकी स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रे देवे सुधर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं स्नानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंत्र जंत्रं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सच्चिदानं सर्वं परणासि अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृद्धकर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोचपालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अचिदी अपेदी अनामं अकामं समस्तोपराजी समस्तस्ततामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग प्रयाचंद अगाते अबाते अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने नमस्त्वं निर्णाते नमस्त्वं प्रमाते नमस्त्वं अगंजे नमस्त्वं अपंजे नमस्त्वं काले नमस्त्वं पाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो साह साहि नमो माह माहि नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोग रोगे नमो शोक शोके नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परम तानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृष्यं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परनासी सदा सर्वदा हृद सिद्धं निवासी चरपड़ चंत्व प्रसाद अमृत कर्मे अमृत तर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग सर्वंग दाता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग पानी सर्वंग मानी सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग भुगता सर्वंग जुगता सर्वंग देवं सर्वंग पेवं सर्वंग

प्रजाजिनी आप सुवारी शिव कन को सब गुण सुख दियो शत्रण को पल मुगत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंच रह स्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक की पीर पछाने कट कट के पट पट की जाने जब उदकर्क करा कर तारा प्रजा तर तब देह अपारा जब आकर्क कर तो कब हूँ तुम मैं मिलत दे तर सब हूँ जेते बदन सिर सब तार आप अपनी बूझो चार तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब वाद नील अनाद असंभुता का मूड उचारत भेदा जाकु भेव न पावत भेदा ताको कृपाहन अनुमानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह भेव आप अपनी बुद्ध है जीती वर्णत भिन्न भिन्न तुह तेती तुमरा लका न जाय पसारा के विश्व जा प्रथम संसार है कै रूप अनूप स्वरूप रंग भयो राव कई भूपा अंड जे रसित जगिनी उत भुज खान बहुर रच दिनी कौ भूल राजा हवे बैठा कौ सिमट भय शंकर कैठा शिग्रे श्रेष्ठ तिकाय चम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख वार सिख संघरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे आस तुझ तब सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तहवे मरे पुरख जमन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सुटारे जो कल को एक बार ते है ताके काल निकट नह है रक्षा हुए ताहे शुभ काला दुष्ट अरिष्ट रह तत्काला कृपा दृष्ट तन जाहे निहरि हो ताके ताप तनक में हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई दुष्ट छाछ व सकै न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास देता है उबारा जिनर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दुख ते रहा कड़ के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे लिहो उबारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दुख ते लिहो बचाई कृपा करे हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दुखिन को छय करता श्री अस्तु जप भय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन वांछत फल पावै सोई दुख न दिसे व्याप्त कोई डेल सुने गुंग जो याहे सुरस न पावई सुने मूढ़ चित लाए चतुरता आवई दुख दर्द पौ निकट न तिन्नर के रह हो जो या की एक बार चौपई को कह चौपई संबत सत्रह सहस पनी जय अर सहस पुन तीन कही जय भाद्र सुदी अष्टमी रवारा

बिन सतगुरु मुक्त न पावै, पावै मुक्त न होर तै कोई, पुछो भविकिया जाए। अनेक जूनी भरम आवै, बिन सतगुरु मुक्त न पाए, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, फिर मुक्त पाए लाग चरणी, सतगुरु सब सुन।

जमया परिवार भला पाया लिप छिटकी लगी तृष्णा माया मरवरत आया हि माया जितर विसरै मुख जय भाऊ दूजा लाया कह नान गुर प्रसादी जिना लिवला गीतिन विचे माया पाया हरे आप मुल कह मुल न पाया जाए मुल न पाया जाए किसै विट हो रहे लोक बिल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनु सिर सौपिए विच हो आप जाए जिस दा जीव तिस मिल रह हर वसै मन आए हर आप मुलक है भाग तिन्ना के नानका जिन हर पल्लै पाए हर आस मेरी मन बन जारा हर रास मेरी मन बन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जी हो लाह खटे हो दिहाड़ी एव धन तिना मिलया जिन हर आपे पाणा।

जाए होरत कितै जिचर हर रस पल्लै न पाए हर रस पाए पल्लै पीए हर रस बौड़ न तृष्णा लागै आए इहो हर रस करमी पाईए सतगुर मिलै जिसे आए कह नानक होर अन रस अभिसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो पाए जग दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कह नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदिर बनिया हर गाओ मंगल सखिए शोभ दुख ना व्यापे गुरु चरण लागे दिन सुभागे आपना फिर जापे अनहत बाणी गुरु शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कह नानक प्रभा मिलिया करन कारण जुगो ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कह क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीर आजा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन न वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कह नानक इहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्र हो मेरे हो हर तुम मह जो तरी हर बिन वरण देखो कोई हर बिन वरण देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो वे संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझ आ जा वेखा हर इक है हर बिन वर न कोई कह नानक नेत्रंद से सतगुर मिले दिव दृष्ट होई हे श्रवण हो मेरे हो साचै सुनने नो पठाए साचै सुनने नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी जित सुनी मंतन हरिया हुआ रसना रस समानी सचल कबिड़ानी ताकि गत कही न जाए कह नानक अमृत नाम सुनहो पवित्र हो सच है सुनै नो पठाए हर जियो गुपांदर रख कह वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पाऊ नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनीक न दसवां द्वार दिखाया तहनेक रूप नव नव निध तिष्टांत न जाई पाया कह नानक हर प्यारे जियो गुफांदर रख कह वाजा पवन बजाया एहो साचा सोहेला सच है कर गावहु गावहु ता सोहेला कर सच है जिथे सदा सच त्यावहे सचो त्यावहे जा तुद भावहे गुरमुख जिना बुझावहे एहो सत सभना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावहे कह नानक।

कूड प्रजा कूड सब संसार कूड मंडप कूड माड़ी कूड बैसन हार कूड सोयना कूड उपा कूड पैरन हार कूड काया कूड

ग्रोगरी युनिवर्स तंत्र जामी सतगुरु जी तंत्र साहिब से गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज पाव जी दरदी हाजिर पढ़ते हैं बेअंत गुरसिख माई पायुरो पाव जी दी बंदे सत्कार जो बेअंत माया बेटा पढ़ते हैं जिन सारण सिखी दान प्रोसादान चन्ना कुन्ना प्यार रखना खजाने पर पुकड़ने सो आओ गुरु प्यारी साचंग जी कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई पलां चुका दिखिमा करनी अगले प्रोग्राम सरण करी सत्कारयोग ज्ञानी गुरमेल सिंह जी उन्हां पासों अज दे श्री मुखाक दे विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरण करिए दस फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

जप हर हर हर उरतारी, हर हर हर औखद जग पूरा, जप हर हर हौं मैं मारी, हर हर अगम अगा।

हम तिसकै सद कुर्बानी। हर के संत सुनहु जस कानी, हर हर कथा सुनहु एक निमक पल, सब किल विक पाप लह जानी। राव ऐसा संत साध जिन पाया, ते वड पुरख।

हर हर भगत बनी अत शोभा, हर जप्यो ऊतम पाती, आपे ठाकुर आपे सेवक, आप बनावै पाती, नानक जन तुमरी सरनाई, हर लख राखो लाज।

इव हर हर नाम ते आही। हर दर कह भाव है फिर जन्म न आवह। हर हर हर जोत समाई, जप मन नाम हरी होहे सर्ब सुखी। हर जस ऊच सब ना ते ऊपर, हर हर हर सेव छड़ाई रहाओ। हर कृपा नित कीनी, गुर भगत हर दिनी, तब हर

सुख गर्दभ भस्म संगीत अमृत संग नाहे रुच आवत बिखैठ गौरी प्रीत उत्तम संत भले संजोगी इस युग में पवित पुनीत जात अकारथ जन्म पदार्थ काच बाद रह जीत जन्म जन्म के

बिन से जाए परमाई, अनद रूप रव्यो सब मधे, जत कत पेखौ जाई। तुम दयाल कृपाल कृपा निद, पतित पावन गोसाई, कोट सुख आनंद राज पाए, मुखते

प्रसाद प्रसाद हर हर हर गाए, बिखै ब्याद तब हुटो रहाओ। नह सुनिए नह मुखते बकिए, नह मुह है ओ डिठी।

बोले सहज सुभाई चरदर जी को नमे सजन की सेवा लगे जी को अपना दुख मिटावे हर नाम हृदय सदगावे जी को अपनी शोभा लोरे साथ संगयो हमें छोरे जी को जन्म मरण ते डरे साधना की सरनी प्रे जी जन को प्रभु दर्श प्यासा नानकता के बल बल जासा सागल प्रख में प्रख प्रधान साथ संगया प्रमटे मान आपस को जो जाने नीचे सो गुणी सत्य ऊंचा जा का मन हो सगल की ना हर नाम तिर कट कट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पीख सागल शिष्ट साजना सोख दुख जन संदिष्टिता नान पाप नहीं लेपा निर्धन को धन तीरो ना हो निथा को ना तीरा था निमानी को प्रभु तीरो मान सगल कटा को दे हो दान करण प्रावन हार स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी गत निजान पिया अपने संगा परम राती तुमरी उस्त तुम त्यो ही नान करुणा जांस कोई सर्व धर्म श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप निर्मल करम सागल क्रिया में उत्तम क्रिया सात संग दुर्मत मलहिरिया सागल उद्दम में उद्दम कला हर का नाम जपो जी सदा सागल बानी में अमृत बानी हर को जसुन सुन बखानी सागल खान ते ओ उत्तम थान नानक जेहे कट बस हर नाम श्लोक

ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी के मित कौन बखान है, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जान है, ब्रह्म ज्ञानी का अंतर पार नार, ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सत्सच का करता, ब्रह्म ज्ञानी सज्जीव नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता।

उर्दारजो अंतरनाम सर्वमापिका भगवान निमक निमक ठाकुर नमस्कार नारको प्रचु सकल निस्तार परी मिथ्या नाही रचना प्रचु मनम प्रीश नरंजन्द्रास पात्रीय रूपना पेखा नेत्र साध की टहल संत तुम हे कारण ना सुने काहू के निंदा सत्य जान यावच को मंदा गुरु प्रसाद विख्या परहर मन की बात ना मन के तरह इंद्रे जित पंच दोख तेरा ऐसे नानक कोट मदे को ऐसा प्रस वैष्णो सो जिसो प्रसो प्रतन बिछन की माया ते हो पिन कर्म करत हो वै निक्रम जिस वैष्णो का निर्बल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग्राचै मंथन।

भगवती भगवंत भगत कारंग सगल त्याग दुष्कासंग मानते विनते सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल को वह तिस भगवती की मत उत्तम हो वह भगवंत की टायल करै नित नीत मंत्र अर्पय वचन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक सा भगवती भगवंत को पावै सो पंडित जो मन पर बोधै राम नाम आत्म मैं सोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित के अपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जो ननावै वेद पुराण स्मृत पूजा मूल सुख में जान अस्तूल सो वर्णा को दे उपदेश नारू सुपंडित को तदादेश वेद मंत्र सर्व को ज्ञान चो वर्णा में जप को नाम जो जो जपै जिसके गत होई साध संग पावै जन कोई कर कृपा अंतर उतार पशु प्रेत मुगत पात्र को उतार सर्व रोग का उखन नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काहु जुगत कितना पाइय त्रम नानक मिले जिस लिख्या दुर्क्रम जिसका मन पार्व का निवास जिसका नाम सत रामदास आत्म राम तृष्ण द्री आया दास दर्शन तन पाई दिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास तर के प्रवानु अपने दास को आप कृपा करै जिस दास को सब सो जी पर सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नारक रामदास प्रभु की आज्ञा आत्म ही ताव है जीवन मुकत सोग कहा वह तैसा हरक तैसा उस सोग सदानंद तय नहीं वियोग तैसा सोव्रत तैसे चमाटे तैसा अमृत तैसे भी खाटे तैसा अमृत तैसे भिख खाटे तैसा मान तैसा अपमान तैसा रंक तैसा राजान जो वर्ता ऐसा जुगत नारको पुरख किया जीवन मुकत पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित घर राख तैसा तिन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभु भाव है सोय पुन हो पुत्रियो आप कोई अनंत तरंग लखेरा जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसे मत ते तैसा प्रकाश पार ब्रह्म कृता बनास सदा सदा सदा दयाल सिमर।

कहीं कोट होय पुजारी, कहीं कोट आचार बिहारी, कहीं कोट वे तीर्थवासी, कहीं कोट मन पर मैं उदासी, कहीं कोट वेद के स्रोत है, कहीं कोट से बिस्तर होते, कहीं कोट आत्म ध्यानदार है, कहीं कोट कब का विचार है, कहीं कोट नौत नाप चिजाव है, नान कृति का अंतना पाव है, कहीं कोट भय अभिमानी, कहीं कोट अंत ज्ञानी, कहीं कोट कृपण कठोर, कहीं कोट अब आत्मनिकोर, कहीं कोट पद्र को ही रह, कहीं कोट पर दुख ना कर, कहीं कोट माया शर्माही, कहीं कोट पर देश ब्रह्माही, जित जित लावो तित तलगना नान करते की जा रहे करता रचना, कहीं कोट सिद्ध जति जोगी, कहीं कोट राजी रज भोगी, कहीं कोट पंखी सर्प उपाई, कहीं कोट पात्र वृक्ष निपजाई, कहीं कोट पौन पाणी बैठंतर, कहीं कोट देश भूमंडल, कहीं कोट सचिया सूर्य नक्षत्र, कहीं कोट देवदान इंद्र चर चत्र, सगल सामग्री अपने सुतधार है, नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है, कहीं कोट राजेश तामस सातक, कहीं कोट वेद पुराण स्मृत राष्ट्र, कहीं कोट किए रतन समुंद, कहीं कोट नाना प्रकार जंतु, कहीं कोट किए चिरजीवे, कहीं कोट गिरीवे सोभ्रंती वे, कहीं कोट दिखा किन्नर पिशाच, कहीं कोट भूत प्रेत शुकर मिलगाच, सबते नेरा सबूत है दूर, नानका बलिप त्रिया भरपूर, कहीं कोट पाताल के निवासी, कहीं कोट नरक स्वर्ग निवासी, कहीं कोट जन्म जीव मरा, कहीं कोट बोझो नी पेरा, कहीं कोट बैठति ही खाई, कहीं कोट काल तक पाही, कहीं कोट किए तनवंत, कहीं कोट माया मैं चिंत, जे जी पाण चैते राखे नान सब किस प्रभ कह हाते, कहीं कोट पै बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी, कहीं कोट प्रभ को खोजंते आत्म में पार बमला हमते, कहीं कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिलियो प्रभ अवनाश, कहीं कोट मांगे सतसंग पार बम तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्ना तेजन सरातन तान, कहीं कोट खानी अरखंड, कहीं कोट काच ब्रह्मंड, कहीं कोट हो अवतार, कहीं जुगत की नो विस्तार, कहीं बार पसरियोपाचार सदा सदा एक एक अंकार, कहीं कोट किने बो भात प्रभत हो प्रमाय समात, ताका अंतर जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए, कहीं कोट पार के दास तीन हो वत्यात्म प्रगाढ़, कहीं कोट तत के बेते सदा निहार एको नित्रे, कहीं कोट नाम रत पीवा मर भय सब सदी जीव, कहीं कोट नाम गुण गावे आत्म रस सुख सहज समावे, अपने जन को सास सास संभारे नानक परमेश्वर के प्यारे सलोक, कारण कारण प्रवीक है दूसर नाही कोई, नानक चित बलहारण जल थल मैयर सोए अष्टपदी, करण क्रावन करण जोग जो तुझ पावे सोई होग, खीन में था तापन हारा अंत नाही गिज पारा वारा, हुक्मे दार आदर्श रहावे हुक्मे उगजे हुक्म समावे, हुक्मे ऊंच नीच बोहार हुक्मे अनेक रंग प्रकार, कर कर देख अपने बड़ियाई नानी सब में रिहा समाई, प्रभु भावे मान कुकुत पावे प्रभावे ता पात्र त्रावे, प्रभु भावे बिन साक्षी राख प्रभावे ता हर गुण पाख, प्रभु भावे ता पति तुदारे आप करे आपन विचार, दुआ त्रिया का आप सुभावी खेल है विषय अंतर जाम, जो पावे स्वीकार करावे नान दृष्टि अवरणा आवे, को मान बुद्धि क्या भई आवे जो तुझ पावे तो ही करावे, इसके हाथ कोई ता सब किचले जो तुझ पावे तो ही करे, अनजानत विख्या मैं रच दे जानत आप आप बच, परमे भूला दै दिशावे नमक माई चार खंड प्रियावे, कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले, किन बहन ईच गीत को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज, जा का दृष्ट कचूना आवे तिस तत्काल दैन दिश प्रगटावे, जा को अपनी करा बख्शीस ताका लेखा नगर जगदीश, जियो पिंड सब तिसगी राज घट घट पूरन परम प्रकाश, अपने बनते आप बनाई नानक जीव देख बड़ाई, इसका बन लव इसका बल नाई इस हाथ, करण करावन तरम को नाथ आज्ञाकारी व्यपराजी, जो तिर भाव है सोई कुंती हो, कब हूँ ऊंच नीच मैं बसा, कब हूँ सोग हर को रंगा सा, कब हूँ निंद चिंद व्यवहार
कबू ऊब आकाश प्यारू कबू बेता ब्रह्म विचार नानक आप मिलावन हार कबू नृत कराय बो बात कबू सोई रहे दिन रात कबू महाक्रोध विकराल कबू तर्क की होत रवाल कबू होए बैबड़ राजा कबू बेखारे नीच का साजा कबू अब कीरत में आवे कबू बला बला कहावे जो प्रभु राखै तुहि रहै गुरु प्रसाद नानक सच कहै कबू होए पंडित करे बखियान कबू मोंदारी लावे ध्यान कबू तट तीर्थ स्नान कबू सिद्ध साधि ज्ञान कबू कीट हर्ष पतंग होए जिया अनेक जोन परमै परमिया नाना रूप जो सुहागी दिखावै जो प्रभावै तिवै नचावै जो तिभावै सोई होए नानक दूजा अवर ना कोई कबू साध संगत उपावे उस स्थान ते बोर ना आवे अंतर होए ज्ञान प्रकाश उस स्थान का नहीं विनाश मंत्र नाम रते एक रंग सदा बसै पार ब्रह्म का संग जो जन मैं जन आए ठिकाना त्यो ज्योति संग ज्योत समाना मिट गए गवन पाए विश्राम नानक प्रभु का सद

परी संत कै दुख निवार जा कटै संत कै दुख जमते नहीं छुटै संत कै दुखन सुख सब जाय संत कै दुखन नरक में पाय संत कै दुखन मत होए मलीन संत कै दुखन सो बाते हीन संत के हते को रखै ना कोई संत कै दुखन तान अवर टोई संत कृपाल कृपा जी करै नानक संत संगिंदक बीतरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काब जो लवै संतन कै दुखन तरप जुन पाय संत कै दुखन त्रिकर जोन किरमाय संतन कै दुखन त्रिकनाम जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन ते सब जाय संत कै दुखन नीच नीचाय संत दो की गाथा को नाहे नानक संत पावे ता ओ बीगत पाहे संत का निंदक महत ताई संत का निंदक किन टिकन ना पाई संत का निंदक महात्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक हो सर्व रोग संत के निंदक हो सदा विजो संत के निंदा दुख मैं दुख नान संत भावे तटका भी होय मोक संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नैमित संत के दुखी को डान लागे संत के दुखी को समती आगे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी जन सदा पिकारी संत का दुखी जन मैं मरा संत के दुख ना चुकते तरह संत के दुखी को ना ही ठाओ नान संत भावे था नहीं मिलाई संत का दुखी अंत बीते टूटे संत का दुखी किते गाज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान परमाई है संत का दुखी उजड़ पाई है संत का दुखी अंतरते थोता जो सास बिना मृतक की रोता संत के दुखी की जड़ कितना ही अपन बीजा पे ही खाहे संत के दुखी को अवना राखन हार नान संत भावे ताले उबार संत का दुखी उबल लाए जो जल की हुन मछली तड़बड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जो पावक निद्रा पै संत का दुखी चुटही खेला जो गुआर तिलकेत माई दुवेला संत का दुखी धर्म थे रहत संत का दुखी सदमितिया कहत किरत निंदक का दुही पिया नाम ज्योति भावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए संत के दुखी को दर्ग मिले सजाए संत का दुखी सदा चेकाई है संत का दुखी नाम रहन जीवाई है संत के दुखी की पूजे ना सा संत का दुखी उठ चले निराशा संत का दुख न चिटे कोई जैसा पाव है जैसा कोई होई पया कृत ना मेटे कोई नानक जाने सच्चा सोई सब कर चिसके ओ करने हार सदा सदा तुझको नमस्कार प्रभु के उचित क्रोध इंद्रात तिसे दियाओ सात ग्रास सब कच वर्त चिसका किया जैसा करे तैसा को किया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनो कृपा करे तिसी आपने नाम दे बड़ भागी नानक

मान कुकी टेक बढ़ती जब जान देवन को एक भगवान जिसका जय रह गाय बोर न तुटना लागे आय मारे राख एक बाप मानुक कह के चनाई हाथ जिसका हुकम बूझ सुख होय जिसका नाम रख कंठ प्रोय सिमर सिमर सिमर पर सोय नानक बिघन ना लागे कोई उस सत मन में कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रचना अमृत पियो सुधा सुहेला कर लै जियो नैरो टेक ठाकुर का रंग साध संग सब संग चरण चलो मार गोविंद मिटे पाप जपे हर बिंदु कर हर करम सर्वन हर कथा हर दरगे नान पूजन मथा बड़ भागी ते जिन जगवाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से धनवंत गरी संसार मन तन मुख बोला हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पचान इत उतियो सो जी जान नाम संग जिसका मनमानिया नानित ने निरंजन जानिया गुरु प्रसाद या पनिया सुजय तिसकी जान उतर ना बूझे साध संग हर हर जस कह तु सारब रोग ते ओ हर जंद्रा तु अंधन कीर्तन केवल बखियार कृत मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिसम की आशा तिसकी कटिया जमकी पासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक से नाला के दुख जिसको हर प्रभु मन चित आवे सो संत सुहेला नहीं दुलावे जिस पर अपना कृपा करे सो सेवको किसे डराए जैसा खाते साधिष्ठाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सिजिया गुरु प्रसाद तत् सपूजिया जब देखो तब सब किस मोल नानक सो सुकुम सोइया स्थूल न कि जन भय न कि जमर आपन चिलता पी कर आवन जावन दृष्ट दृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सिष्ट आपे आप सकल में आप अनुक जुगत रताप उताप अब नासी नाही किस खंड तारण तार रहो ब्रह्मंड आला का पे ऊपर प्रताप आप जपाय का नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सोभावंत सकल संसार उदरित नवंत प्रभु के सेवक सकल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसारण आपे मेल ले कृपाल गुरु का शब्द जपे निहाल उनकी सेवा सोई लागे जिसनो कृपा करे बड़ भाग नाम जपत पावे विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम करवान जो किच करे तो प्रभु का रंग सदा सदा बसै हर संग सहज सुभाए होवै सो हो करने हार पछाण सोई प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तुष्माय सुभाए ओ सुख निदान उन्हों बन आए आप सुख आप दीनो मान नानक प्रभु जन एक जान सलोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरता जानन हार जाका सिमरन उतरिया नानक जिस बलखार पदी टूटी गानन हार गोपाल सर्व जिया पे प्रतपाल सगल के चिंता जित मन माही तिते बिरता कोई नाही प्रेमन मेरे सदा हर जाप अपना जी प्रभाप आप आपन किया कछु ना होए जिसो प्राणी लोचे कोए तिस बिन नाही तेरे कित काम गत नानक जपे कर नाम रूप वंतो नाही होवे प्रकी जोर सकल गढ़तो है धर्मता हुई क्या को करवे जहाँ सबकी चिस्का दी आदर वे हाथ सूरा जे को कहावे प्रभु की कला बिना खेलावे जे को हो दातार तिस दिन हार जाने गावा जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नान सो जन सदा रोग जो मंदिर को था मैं सम्मन तो गुरु का सबन मन तब मन जो पाखाण नाव चढ़ करे प्राणी गुरु चरण लगत नीचे जो अंधकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन होई विगास जो महा उद्यान में मार्ग पावे जो साधु सुमिल ज्योत प्रगटावे तिन संतन की बात हो तू नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिललाइया पूर्व लिखी का लिखिया पाइया दुख सुख प्रभु देवन हार अवर त्याग तुझ से सितार जो कच करे सोई सुखमान मुला का ही प्रे अजान कौन वर्ष आई तेरा संग लपट रहे रचलो भी पतंग राम नाम जकर दे माहे नान पर से थी दरगाहे जिस अखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया तज अब मान ले हो मन मोल राम नाम हृदय में तो लाद के सुनते संचाल और त्याग क्या जंजाल तन तन कह सब कोई मुकु जन हर दरगह सोए युवा पार
बिल्लावा पार है नान ताके सतबुलहारे चरण सार के दो दो पियो हार प्रसाद को अपना जियो सार की दूर करो स्नान साधु पर जाइए कुर्बान साध सेवा बड़ पागी पाइये साध संहर कीर्तन गाइये अनेक विघ्न के साधु राख हर गुण गाए अमृत रस जाके ओट गई संत दरियाया सारा सुख नानक ते पाया मृतक को जीवाल निहार भूखे को देवती आधार सर्व निदान जाके दृष्टि माहे पूर्व लिखी का लेना पाहे सबके छिसका हो करण जो तेज बिंदु सरफ हुआ ना हो जप जन सरा सदा जिंद्राणी सबते ऊंच निर्मल करणी कर कृपा जिसको नाम दिया नान को जन निर्मल थिया जाका मन गुण के प्रतीत तिजन यावे हर परम चीत भगत भगत सुनिया तह लोए जा कह हृदय एक होय सच करनी सत्ता की राज सच हृदय सतमुख कहत साचे दृष्ट साचा आकार सच वर्ते साचा पासार।

अहुगुण से प्रभु भिन्न तिजय बुझाई नानका ये सो होगा सो प्रसन्न परी अपना से प्रमन में राख मानु की तू प्रीति आग जिससे प्रणा ही किसको तरफ निरंतर एक होए आपे बिना आपे रान गैर गंभीर गई सुजान पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निदान दयाल बखिंदु साध तेरे की चरणी पाओ नानक मन एव अंदराओ मनता पूर्ण सरना जोग जो कर पाया सोई होग हारन ब्रह्म जाका नेत्र कोर तिसका मंत्रण जा रहे होर आनंद रूप मंगल सद जाक सारव थोक सुनिए करता कर राज में राज जोग में जोगी तपा तपीसर की स्तना भोगी त्याय त्याय बुलते सुख पाया नानक सुपुर्ग काठ ने अंत ना पाया जाकी लीला की मतराय सगल देव हारे अवगाई पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे यमदास नाम त्याग जय तय गुण में जाको परमाए जन्म मरै पर आवे जाए ऊंच नीच चित्ते अस्थान जैसा जनावे तैसा नाम जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेद।

सुजाने प्रभु अपने का हुक्म बचाने, जिसकी महिमा कौन बतानू, जिसका गुणगा एक न जानू, आठ पैर प्रभु सह हजूरे, को नान से ही जन पूरे, मन मेरे तिन की ओट लहे, मन तनि अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु बचाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावे, जिसका दर्श सब पाप मिटावे, और शान सगली साड़, तिस जन की तू सेवा।

नानक बहुर न आवे जाए, तुस्ते दूर कहा को जाए। उबरे राखन हार दिहाय, निर्भो जपै सगल भो मिटे, प्रभ कृपाते प्राणी छुटे। जिस प्रवाके दिस नाई दुख नाम, जपत मन हो सु चिंता जाय मिटे अहंकार। तेजन को कोई न पहुंच रहा, सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा। नानता के कार्य पूरा, बात पूरी अमर जा की दृष्ट। दर्शन पेकर उदर श्रेष्ठ, चरण कमल जा के अनु सफल दर्शन सुंदर रूप। तन सेवा सेवक परवान, अंतर जामी प्रकुरदान। जिस मन बसै सोहोत निहाल, ताके निकट नावत काल। अमर पे अमरा पद पाया, सास नानक हर त्याय श्लोक। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपाते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। अश्वदी संत संग अंतर प्रभ डीठा, नाम प्रभु का लागा मिठा। सगल समुद्री एक घटमाए, अनेक रंगना ना दिष्टाय। नौरिद अमृत प्रभु का नाम, देही में इसका विश्राम। सुन समाध न तैनात, कहन न जय अचरज विस्माद। तिन देखा जी साफ दिखाए, नानक ते जना बुझाए। सर्व भूत आप और तारा, सर्व नैन आप ही कन्हारा। सगल समग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जाने खेर बनाया, गया कारी की नी माया। सब कह मध्य लिप्त हो रहे, योग्य कहना सो आप ही कह। जो किच कहना सो आपे कह। बंतन पर उठा पार्वण, जैसी आज्ञा तैसा करम। पौन पानी वै संतर माए, चार कुंड दे दिसे समाए। तिस्ते बिना ही कोठाओ, गुरु प्रसाद नानक सो पाओ। वेद पुराण सिमरत मैं देव, सस्यर सूर नक्षत्र मेघ। बाणी प्रभु की सबको बोले, आप अडोल न कबहु डोले। सर्व कला कर खेल खेल, मोल न पाइय गुण मोह। सर्व ज्योत में जाके ज्योत, हर स्वामी ओत ओत। गुरु प्रसाद ब्रह्म का नाश, नानक तिनमय विश्वास। संत जना का पेकन सब ब्रह्म, संत जना का हृदय सब धर्म। संत जना सुनह सुबचन, सर्व व्यापी राम सुरचन। जिन जाता तिसे रहत, सत वचन साधु सब कहत। जो जो होए सोए सुखमान, करण करावन हार प्रजान। अंतर बसे बार भी हुई, नानक दर्शन देख समूई। आप सत क्या सब सत, तिस व्रते सगल युत्पत। तिस भावत करे विस्तार, तिस भावत एकंकार। अनेक कला रखी न जाए, जिस भावत तिस लय मिलाए। कहो निकट कौन कही है दूर, आपे आप आप भरपूर। अंतर का जिस आप जनाए, नानक तेजन आप बुझाए। सर्व भूत आप और तारा, सर्व नैन आपे कनारा। सगल सामग्री जा का तना, आपन जस आप ही सुना। आवन जान खेल बनाया, आज्ञाकारी की नी माया। सब कहना तृप्त हो रहे, जो कुछ कहना सुबह पे गए। आज्ञा आवे आज्ञा जाए, नान जा पावे तले समाये। इसते हुए सो नाई बुरा, बुरा कहो कि ना कच करा। आप भला करतो तो नहीं की, आप पे जाने अपने जी की। आप साच तारी सब साच, ओत पोत आप बन सम्राट। ताकि गदमित कहीं न जाए, दूसरा होता सोझी पाए। जिसका किया सब परवान, गुर प्रसाद नानक जान। जो जाने तिसदा सुखोया, मिलाए ले परसोए। ओ धनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन।

अश्वति पूरे पुर का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख साथ साथ सिमरो गोविंद मनंतर की उतर जिंद आस नित्यागो तरंग संजना की तुर हुनमंग आ छोड़ बेनती करो साध संग गगन सागर तरो हर तन के भरले भंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संपज ब्रह्मानंद नरक निवार उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक रूप जा कह रंगने गोपाल दमोदर दीन दयाल दुखभंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का आधार उत्तम सरोज साध के वचन अमलिक लाल हे रतन सुनत कमात हो सुधार आप तरह लोग कहनिस्तार सफल जीवन सफलता का सुन जा कह मल्ला कार रंग जय जय शब्द नाहत वा जय संत नंद करे प्रगा जय प्रगटे गोपाल मात कह माथे नानक उदरत इनके साथे शरण जो सुन सर नहीं आए कर कृपा प्रभाव मिलाए मिट गए बैर भये सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होए शिव की सेव आल जंजाल विकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु हरि नानक ने भी खेप मारे प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधानी का कर चीत सुकमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निधान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊंच पाए स्थान बोर न होवे आवन जान हर धन खाट चले जन सोए नानक जिसह परापत होए खेम सात्री दिनों ने बुद्ध ज्ञान सत्य सिद्ध विद्या तप जो प्रभु ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कैमल सकल थे उदास सुंदर चतुर तत्व काव्यता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन कै मुख बने गुरु नानक नाम वचन मन सुने।

गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत गिर पाते जमते छुटै, जा कै मस्तक।

सुखमनी सुख अमृत प्रभु नाम भगत जना के मन विसराम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की

0: कोई न जाने तुमरा अंत चेते ऊंचा भगवंत सागर समग्री
1: तुमरा सूतर तारे तुम ते हो ए सो

जोगंती और सोगंती जल जोगंती बहुपात बचा सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दिन को राख लिया काटिया रोग महा सुपाया हर अमृत मुख नाम दिया मन मेरी गोहो हर नाम का ओला तुझे ना लागे ताता चला ऐसा जिन्हें शरण की तिहन जिन्हों की विचार दर्शारण के पाई उस महानपुरु के नाल जुड़िया रहे जिस महानपुरु की कृपा सदका सदा रहे निर्मल सी काया काल ना कवहूं व्याप है उस महानपुरु के चन्ना नाल जुड़े रहिए ताकि साडा जीवन सुख के नाल वर्तित होए सो इनिक सेवा प्रवान करनी हुई अपना चुका दिखी मैं आओ अगले प्रोग्राम सरुण प्रिय सत्कार योग ज्ञानी वरिंद्र पाल सिंह जी उन्हां पासों अज दे जिहड़े हन चल रही गुरबाणी दी विचार ओ सरुण प्रिय गुर इतिहासिक इतिहास सरुण प्रिय दासलो फतेह प्रवान करो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

कि ऐसे राग हैं जिन्होंने गा के सुन के जिन्हां दे अंदर राग का बीज है एक मस्ती छा जाती है, क्योंकि राग परमेश्वर ना मिलाप करता है। इतिहास है कि गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कोई समाधि नहीं लाई, कोई तपस्या नहीं की। सतगुरु जी आप वचन करते हैं ना, मैं रब नूं गा के पाया है। बड़ा ईजी तरीका रागा में कोई राग गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने लेके आए। जदों संसार बनया है गुरबाणी भी सी राग भी सी, लेकिन बाणी नूं रागा में किसी ने नहीं सिखाया। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने बख्शिश की कि रागा दी और रागा में गा के तो परमेश्वर जरा है। हालांकि आप नारायण है, वो कलाकार जगमह पर रहे हो, लेकिन याद इतिहास कर रहा है गुरु नानक सच्चे पातशाह जो

रे मन कौन गत हुए है तेरे। सदगुरु सत्य पातशाह ने आप गायन की है और जो बिहागड़े भी गायन की है वो भी सत्य पातशाह ने आप कृपा की है। सारे गुरु साहब गुरुजन उस्ताद कहते सन मत समझना कि असी बनाइया रीता, मैं अपने गुरु को गुरु को करद्या करद्या एक गुरु साहब तक कड़ी पहुंच गई है कि वो रीता सुखाओ कुछ मिलना समा लवेंगे आप जी का।